0: Well, the Congress has since taken the issue to the streets, accusing the Bharatiya Janata Party of defending caste discrimination. The party staged protests across the country condemning the RSVP and demanding action against those involved in the vacation ritual.
1: ये मनोवृत्ति जो है, ये वही मनोवृत्ति है जो आजादी के दिनों के अंदर अंग्रेजों के साथ खड़ी थी. ये वही मनोवृत्ति है जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उस समय ये संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान की ड्राफ्ट की कॉपी जलाने का काम कर रहे थे, नजफगढ़ की लेन में बहाने का काम कर रहे थे, और उन्हीं के वंशज आज जो है रामलीला ग्राउंड में वहाँ शुद्धि यज्ञ करते हैं. और अब ये बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी उसी का एक्सटेंशन है, उसी मानसिकता का एक्सटेंशन है.
2: राहुल गांधी जिस प्रकार से लगातार समाज में विमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, दलित वर्सेस अधत करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू सनातन समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और निराधार आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर वहाँ पे लोगों ने एक बुद्धि शुद्धि का इनका काम के लिए यह किया है. अपेक्षा करते हैं कि प्रभु इन पर कुछ बुद्धि देगा इनको, ताकि ये इस प्रकार के निराधार आरोप न लगाएं और समाज को बांटने वाले बातें ना.
3: The ongoing tussle has put into spotlight an uncomfortable truth about caste in India. Caste may be illegal as a basis for discrimination, but caste has not ceased to exist. It still shapes social relations, access, power, and in many places, dignity.